0: हजुरमा गावान से तांसु शरमन कते शिवजी अबार हाल वापस बहाल शो जुमा गावान सा शरा
1: मोरे दा से कहो कल दा चमी नदा
2: मोरे जा अब सर दस्ता दा पोला दे जन्नत
0: अमुक से टाइम अमुक सर दे जुमा गावान सा शरा दगरीबन बार बार ब्रेकी आज अपडेट पर लग टाइम के राख लेलो आओ सुमर समा रुना पर एफएम की ड्यूटी दावा के जी चुनके समंग दावा की पर नहा एफएम बारे नहा फ्रीक्वेंसी आनो बने समंग आवाज शामिल ले तासुल जी आओ फोरी मुंगला अपडेट रख जी वसल्ला रे दगीम खुशाला से दिल्ला रे तासुम खुशाला सा दी खान आओ बार बार समंग आवाज कटकी की मां सरदार मखामख लिंक हो लग्यारी आओ बार बार कटिंग की खुजा खैर दे बस टाइम मुख्तसर दे खान मंग बस यो सु एड्रेस पर शामिल को भी बदन इजाजत दुआ खलुआ अब हर हाल प्रोग्राम स्पॉन्सर कवलो आसमानी कॉस्मेटिक्स और माते वेली जी डॉक्टर इसरार जाना दावा की माशाल्लाह से पिशावर की मौजूद आसमानी स्टूडियो की जी बतासो वही चीज मंगा आसमानी हर बलायल तासो इस्तेमाल अवल ग्वाले चीज हरी बीमारी और मुसनदी और कामयाबी आजमुदाई आज दे दिन इलावा सुबह आसमानी फार्मूला मुकम्मल तौर पर आसमानी तमाम प्रोडक्ट्स में इलावे दले जी उठाए
3: रेडियो अमन नेटवर्क
4: पैगाम अमन है
5: प्यार की एक दुनिया लेकर
4: मोहब्बत समेट कर
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
6: रेडियो अमन नेटवर्क मन रात

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।